भर पर्दो स्वदेशी श्रम र सिपबाट निर्मित आकर्षक डिजाइन का मिसावट रहित चाँदी का एक्सक्लुसिव गहना लगायत भाडाहरू, विवाह लगायत अन्य अवसर का लागि चाहिने चाँदी का सामानहरू को लागि सिल्वर प्यालेस, न त ठगिने डर न मिसावट को चिंता, हरेक सामान मा 100% शुद्धता को ग्यारेन्टी दिने एक मात्र सिल्वर प्यालेस, पसल नम्बर 15 विशाल बजार न्यू रोड एवं प्युखा न्यू रोड होलसेल तथा रिटेल सेवा।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: घर हो श्या मन्दिर।

कार्यक्रम भजन दीपांजलि प्रत्येक सोमबार सुमधुर भजन का साथ में बिहान 8 बजे देखि 9 बजे सम्म सुन्न सक्नुहुनेछ केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा। यस कार्यक्रम का प्रायोजक उच्च स्तरीय प्रविधि द्वारा स्वदेशमै निर्मित चाँदी का हर एक प्रकार का सामग्री का लागि प्रसिद्ध सिल्वर स्टेट धर्मपथ।

0: गीता ज्ञान।
1: गीता ज्ञान संस्कृत भाषा रूपांतरण का साथ में प्रत्येक बृहस्पतिवार बिहान 8 बजे देखि 9 बजे सम्म सुन्न सक्नुहुनेछ केवल FM अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा। कार्यक्रम भजनांजलि प्रत्येक मंगलवार बिहान 7 बजे देखि 8 बजे सम्म अवश्य सुन्नुहोला केवल FM अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा।

सूत्र समझदारी को सेतु एफएम अध्यात्म ज्योति सिल्वर पैलेस विश्वसनीय सुरक्षित र भर पर्दो स्वदेशी श्रम र सिप बाट निर्मित आकर्षक डिजाइन का मिसावट रहित चांदी का एक्सक्लूसिव गहना लगायत भाड़ाहरू विवाह लगायत अन्य अवसर का लागि चाहिने चांदी का सामान को लागि सिल्वर पैलेस न त ठगिने डर न मिसावट को चिंता हरेक सामान मा 100% शुद्धता को ग्यारेन्टी दिने एकमात्र सिल्वर पैलेस पसल नंबर 15 विशाल बजार न्यू रोड एवं पिउखा न्यू रोड होलसेल तथा रिटेल सेवा।

युग काल की है जब अयोध्या में राजा हरिश्चंद्र महाराज राज करते थे। हरिश्चंद्र के जैसा महादानी ना तो पहले था और ना ही आने वाले कालों में होगा। एक रात्रि हरिश्चंद्र जी स्वप्न देखते हैं कि मैंने अपना समस्त राजपाट, धन वैभव सब कुछ महर्षि विश्वामित्र को दान में दे दिया है। अगले दिन विश्वामित्र जी उनके दरबार में आकर हरिश्चंद्र जी से उनका सारा राजपाट, धन वैभव मांगने लगे।

बड़ी विनम्रता से उनको प्रणाम करते हैं और योग्य विद्वान पंडित को बुलवाकर अपना समस्त राज्य धन माल खजाना विश्वामित्र जी को दान देकर संकल्प लेते हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं, ये तो तूने दान दिया है हरिश्चंद्र, अब दक्षिणा में हमको 500 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए, वो कब देगा? हरिश्चंद्र ने कहा, ऋषिराज यथा शीघ्र ही वो भी आपको दे दो।

ले जाता है। तीनों प्राणी मात्र 500 स्वर्ण मुद्राओं में बिक जाते हैं। विश्वामित्र को दक्षिणा स्वरूप 500 स्वर्ण मुद्राएं देकर हरिश्चंद्र अपने मार

पुत्र का शव लेकर अंतिम संस्कार के लिए उसी शमशान में पहुंचती है जिस शमशान में तारामती के पति की पहरेदारी थी। तारामती पुत्र का अंतिम संस्कार करना चाहती है, परंतु हरिश्चंद्र कर लिए बिना संस्कार करने से रोक देते हैं। जब पहचान जाते हैं ये तो मेरा ही पुत्र रोहतास है और ये मेरी पत्नी तारा है, फिर भी

प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको भादो मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी जिसे अजा एकादशी कहते हैं उसकी कथा सुनाएंगे। प्रिय भक्तों, सनातन धर्म में व्रत कथाओं का बड़ा ही महत्व माना जाता है। सभी व्रतों में व्रत कथाएं पृथक पृथक होती हैं। कहते हैं व्रत कथा सुनने से ही व्रत का पूर्ण फल मिलता है। अतः आज हम आप सभी भक्तों के लिए अजा एकादशी व्रत कथा लेकर आए हैं। आशा करते हैं आप इसे सुनकर श्री हरि की कृपा प्राप्त करेंगे।

भक्त जनों, श्री कृष्ण जी सदैव पांडवों को धर्म और आध्यात्म का मार्ग दिखाते थे और अनेकों ज्ञानवर्धक कथाओं के द्वारा सदैव उचित अनुचित का ज्ञान देते रहते थे। प्रायः सभी एकादशियों की कथा भी पांडवों ने श्री कृष्ण के श्रीमुख से ही सुनी। आज फिर से युधिष्ठिर श्री कृष्ण के पास आकर उन्हें अजा एकादशी की व्रत कथा सुनाने का निवेदन करते हैं और श्री कृष्ण युधिष्ठिर को इस व्रत की कथा सुनाते हैं।

भक्त जनों, श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि राजकुमार हरिश्चंद्र ने गुरु वशिष्ठ के सानिध्य में अपने शिक्षा दीक्षा पूरी की। तत्पश्चात उन्होंने अपने पिता का राजपाट संभाल लिया। समय आने पर उनका विवाह तारावती नामक राजकन्या से हुआ। राजा हरिश्चंद्र बड़े ही सत्यवादी एवं दानी राजा थे। वो ब्राह्मण एवं दीनहीनों को खूब दान दक्षिणा देते थे। उनके राज्य में कोई भी दुखी नहीं था। यदि किसी को सपने में भी उन्होंने दान देने की बात कह दी तो उसे पूरा करते थे। उनकी सत्यता के चर्चे दूर दूर तक थे।

भक्त जनों, श्री कृष्ण ने कहा, गुरु वशिष्ठ के बताए हुए उपाय से राजा हरिश्चंद्र के घर एक बहुत ही सुंदर पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम उन्होंने रोहतास रखा। हे युधिष्ठिर, राजा हरिश्चंद्र ने रोहतास के जन्म पर ब्राह्मणों को खूब दान दिया। क्योंकि राजा हरिश्चंद्र दानी और धर्मात्मा थे, तो उनके चारों ओर ही चर्चे होते थे। यहाँ तक कि एक दिन स्वर्ग लोक में भी ये बात पहुँची कि राजा हरिश्चंद्र के समान सत्यवादी और दानी पूरे पृथ्वी लोक में नहीं है। तब ऋषि विश्वामित्र के मन में आया कि यदि राजा हरिश्चंद्र इतने ही दानी है, तो अवश्य ही उनकी परीक्षा लेनी चाहिए।

जनों, श्री कृष्ण ने कहा है युधिष्ठिर, विश्वामित्र ने ब्राह्मण वेश में आकर राजा हरिश्चंद्र से उनका राजपाट ही दान में मांग लिया। राजा हरिश्चंद्र ने एक क्षण देर किए बिना अपना शीश मुकुट उतार दिया और ब्राह्मण को राजपाट सौंप दिया। किंतु ये तो सपने की बात थी। प्रातःकाल जब राजा हरिश्चंद्र सोकर उठे तो उस सपने के विषय में सोचकर बड़े ही चिंतित हुए। तब तक रानी तारावती उनके पास आईं

0: राजा हरिश्चंद्र की बात सुनकर रानी कहने लगी, हे महाराज, सपने तो सपने ही होते हैं, आप सपने की बात को लेकर क्यों चिंतित हैं? किंतु राजा हरिश्चंद्र कहने लगे,
1: रेडियो अध्यात्म ज्योति

भक्तजनों, श्री कृष्ण ने कहा, गुरु वशिष्ठ के बताए हुए उपाय से राजा हरिश्चंद्र के घर एक बहुत ही सुंदर पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम उन्होंने रोहतास रखा। हे युधिष्ठिर, राजा हरिश्चंद्र ने रोहतास के जन्म पर ब्राह्मणों को खूब दान दिया। क्योंकि राजा हरिश्चंद्र दानी और धर्मात्मा थे, तो उनके चारों ओर ही चर्चे होते थे। यहाँ तक कि एक दिन स्वर्ग लोक में भी ये बात पहुँच गई कि राजा हरिश्चंद्र के समान सत्यवादी और दानी पूरे पृथ्वी लोक में नहीं है। तब ऋषि विश्वामित्र के मन में आया कि यदि राजा हरिश्चंद्र इतने ही दानी है, तो अवश्य ही उनकी परीक्षा लेनी चाहिए।

भक्तजनों, श्री कृष्ण ने कहा है युधिष्ठिर, विश्वामित्र ने ब्राह्मण वेश में आकर राजा हरिश्चंद्र से उनका राजपाट ही दान में मांग लिया। राजा हरिश्चंद्र ने एक क्षण देर किए बिना अपना शीश मुकुट उतार दिया और ब्राह्मण को राजपाट सौंप दिया। किंतु ये तो सपने की बात थी। प्रातःकाल जब राजा हरिश्चंद्र सोकर उठे तो उस सपने के विषय में सोचकर बड़े ही चिंतित हुए। तब तक रानी तारावती उनके पास आईं

युधिष्ठिर, राजा हरिश्चंद्र की बात सुनकर रानी कहने लगी, हे महाराज, सपने तो सपने ही होते हैं। आप सपने की बात को लेकर क्यों चिंतित हैं? किंतु राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, नहीं नहीं रानी, आज तक यदि मैंने किसी को सपने में भी वचन दे दिया तो उसे पूरा किया है। अतः यदि वो ब्राह्मण आ गया तो मैं राजपाट उसे अवश्य दे दूंगा। तारावती जानती थी कि महाराज हरिश्चंद्र वचन के पक्के हैं, अतः उन्हें भी चिंता होने लगी।

भक्तजनों, श्री कृष्ण ने बताया कि हे युधिष्ठिर, ऐसे सत्यवादी और दानी राजा थे हरिश्चंद्र, जिन्होंने सपने में दिए हुए वचन को भी पूरा किया और राजपाट उस ब्राह्मण को सौंप कर प्रस्थान करने लगे। किंतु इतने में ही ब्राह्मण कहता है, हे राजन, आपने मुझे दान तो दे दिया किंतु दक्षिणा नहीं दी, और दक्षिणा के बिना दान अधूरा ही रहता है, अतः आप मुझे दक्षिणा भी देकर जाएं। तो हरिश्चंद्र पूछने लगे, हे ब्रह्मदेव, बताइए आपको दक्षिणा में क्या चाहिए। तो उस ब्राह्मण ने दक्षिणा में 60 स्वर्ण मुद्राएं मांग ली। राजा हरिश्चंद्र एक सैनिक से कहने लगे, जाओ ब्राह्मण के लिए 60 स्वर्ण मुद्राएं लेकर आओ। इतना सुनते ही ब्राह्मण बोला, हे राजन, राजपाट तो आप पहले ही मुझे दान दे चुके, अतः अभी राजकोष पर मेरा अधिकार है, तुम सैनिक को आज्ञा नहीं दे सकते।

भक्तजनों, श्री कृष्ण ने बताया कि हे युधिष्ठिर, ऐसे सत्यवादी और दानी राजा थे हरिश्चंद्र, जिन्होंने सपने में दिए हुए वचन को भी पूरा किया और राजपाट उस ब्राह्मण को सौंप कर प्रस्थान करने लगे। किंतु इतने में ही ब्राह्मण कहता है, हे राजन, आपने मुझे दान तो दे दिया किंतु दक्षिणा नहीं दी, और दक्षिणा के बिना दान अधूरा ही रहता है, अतः आप मुझे दक्षिणा भी देकर जाएं। तो हरिश्चंद्र पूछने लगे, हे ब्रह्मदेव, बताइए आपको दक्षिणा में क्या चाहिए। तो उस ब्राह्मण ने दक्षिणा में 60 स्वर्ण मुद्राएं मांग ली। राजा हरिश्चंद्र एक सैनिक से कहने लगे, जाओ ब्राह्मण के लिए 60 स्वर्ण मुद्राएं लेकर आओ। इतना सुनते ही ब्राह्मण बोला, हे राजन, राजपाट तो आप पहले ही मुझे दान दे चुके, अतः अभी राजकोष पर मेरा अधिकार है, तुम सैनिक को आज्ञा नहीं दे सकते।

भक्त जनों, श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, जब राजा हरिश्चंद्र के पास कुछ भी नहीं बचा तो दक्षिणा देने के लिए उन्होंने 30 दिनों का समय ब्राह्मण से मांग लिया और काशी नगरी में रानी तारावती और रोहतास सहित मेहनत मजदूरी करने लगे। उन्होंने 29 दिनों में ही 60 स्वर्ण मुद्राएं एकत्रित कर ली। राजा हरिश्चंद्र ने सोचा कि अब जाकर मैं ब्राह्मण को दक्षिणा दे देता हूँ। इस उद्देश्य से वो नाव में बैठकर गंगा को पार करने लगे, लेकिन तभी बहुत तेज से हवा के झोंके चलने लगे और उनकी नाव हिचकोले खाने लगी। नाव संभालने में राजा हरिश्चंद्र के हाथों से स्वर्ण मुद्राओं की वो पोटली गंगा में डूब गई। जैसे ही उन्होंने गंगा को पार किया, वही ब्राह्मण आगे खड़े मिले और उनसे दक्षिणा

जनों, श्री कृष्ण ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार रानी तारावती और रोहतास को एक ब्राह्मण ने 40 स्वर्ण मुद्राएं देकर खरीद लिया और राजा हरिश्चंद्र को कालिया नाम के एक चांडाल ने 20 स्वर्ण मुद्राओं में खरीद लिया। कालिया शमशान भूमि में चिता जलाने का काम करता था और चिता जलाने वालों से कर वसूली करके अपना घर चलाता था। क्योंकि अब राजा हरिश्चंद्र उसका नौकर था तो चिता जलाने का काम उसने राजा हरिश्चंद्र को सौंप दिया और तारावती व रोहतास ब्राह्मण के घर नौकरी करने लगे। रोहतास घर के छोटे मोटे काम करता और पूजा के लिए फूल तोड़कर लाता। वहीं रानी तारावती घर के बर्तन मांजती व झाड़ू पोछा करती थी। राजा हरिश्चंद्र कालिया के घर काम अवश्य करते थे, किंतु उन्होंने कभी कालिया के घर भोजन नहीं किया, जिस कारण उनकी काया अत्यंत ही दुर्बल हो गई थी। एक दिन राजा हरिश्चंद्र गंगा से घड़े में पानी लाने गए तो दुर्बल होने के कारण घड़ा नहीं उठा पाए। उन्होंने देखा, उसी समय रानी तारावती भी जल भरने वहीं आई। राजा ने रानी तारावती से घड़ा उठवाने के लिए सहायता मांगी, किंतु रानी तारावती कहने लगी, हे स्वामी, मैं ब्राह्मण के घर नौकरी करती हूँ और आप चांडाल के घर। यदि मैंने घड़े को हाथ लगाया तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि ब्राह्मण पूजा पाठी है और आप चिता जलाने का काम करते हैं। आप पानी के भीतर जाकर घड़ा उठा लें। हरिश्चंद्र ने वैसा ही

भक्तजनों, श्री कृष्ण ने बताया कि रोहतास के सर्पदंश के कारण मृत्यु हो गई। उधर रानी तारावती प्रतीक्षा कर रही थी कि रोहतास अब तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब बहुत देर हो गई तो रानी तारावती स्वयं देखने के लिए आई और आकर देखा कि उनका पुत्र रोहतास मृत पड़ा हुआ है और उसकी सारी काया नीली हो गई है। उन्हें समझते देर न लगी कि इसे किसी जहरीले नाग ने काट लिया। रोहतास को मृत अवस्था में देखकर रानी जोर जोर से रोने लगी। तब ब्राह्मण और ब्राह्मणी भी वहां आ गए और तारावती को समझाया कि होनी को कौन टाल सकता है और अपने आप को संभालो, अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करने की तैयारी करो।

भक्तजनों, श्री कृष्ण ने बताया कि रोहतास के सर्पदंश के कारण मृत्यु हो गई। उधर रानी तारावती प्रतीक्षा कर रही थी कि रोहतास अब तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब बहुत देर हो गई तो रानी तारावती स्वयं देखने के लिए आई और आकर देखा कि उनका पुत्र रोहतास मृत पड़ा हुआ है और उसकी सारी काया नीली हो गई है। उन्हें समझते देर न लगी कि इसे किसी जहरीले नाग ने काट लिया। रोहतास को मृत अवस्था में देखकर रानी जोर जोर से रोने लगी। तब ब्राह्मण और ब्राह्मणी भी वहां आ गए और तारावती को समझाया कि होनी को कौन टाल सकता है और अपने आप को संभालो, अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करने की

भक्तजनों, श्री कृष्ण ने बताया, हे युधिष्ठिर, यद्यपि राजा हरिश्चंद्र अपनी रानी तारावती और अपने पुत्र रोहतास को पहचान गए थे, किंतु उन्होंने अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ा और रानी से कहने लगे कि अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करने से पहले तुम्हें कर चुकाना ही होगा। राजा हरिश्चंद्र की बात सुनकर रोते रोते रानी तारावती कहने लगी, हे स्वामी, कुछ तो दया करो, ये हमारा पुत्र रोहतास है और तुम्हें कर लेने की पड़ी है। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, किसका पुत्र, कौन रोहतास? मैं सिर्फ कालिया का नौकर हूँ। याद करो, उस दिन को जब मैं गंगा में घड़ा उठाने के लिए तुमसे सहायता मांग रहा था, तो तुमने चांडाल का नौकर बोलकर घड़े को हाथ भी नहीं लगाया था। मैं अपने मालिक से गद्दारी कैसे कर सकता हूँ? पहले शमशान भूमि का कर दो और बाद में अपने पुत्र का अंतिम संस्कार।

भक्तजनों, श्री कृष्ण ने कहा है युधिष्ठिर, जब विश्वामित्र ने देखा कि राजा हरिश्चंद्र अपने मृत पुत्र को देखकर भी अपने धर्म से नहीं डिगा, तो इसके समान सत्यवादी कोई हो ही नहीं सकता। तब विश्वामित्र उनके सामने आ गए और रोहतास को भी जीवित कर दिया, उनका राजपाट भी लौटा दिया। एक दिन राजा हरिश्चंद्र गुरु वशिष्ठ से पूछने लगे, हे गुरुवर, विश्वामित्र जी की परीक्षा में तो मैं सफल रहा, किंतु कालिया का नौकर रहते हुए पिता जलाने और अंतिम संस्कार करने वालों से कर वसूलने के कारण मुझे जो पाप लगा है, उससे मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। तब विश्वामित्र जी ने बताया, राजन, एकमात्र राजा एकादशी

0: गोल्ड पैलेस सुक्रपत न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: रेडी मेड या शूटिंग शर्टेज मलाई ट्रैक शूट चाहिए
2: मलाई फ्रॉक
3: मलाई पनी सूट
4: अनि मलाई

0: मैं तुमसे प्यार करती हूँ।
1: क्या?
0: अरे बाबा मैं तुमसे प्यार करती हूँ।
1: मैंने नहीं सुना, जरा जोर से कहो।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैं भरि।
1: One oh four eight.

0: गोल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनु हुने महानुभाव 98 41 28 98 20 मोबाइल नंबर 98 41 28 98 20 में संपर्क करना सकूने।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: One oh four eight.

राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैं भरि।

0: गोल्ड पैलेस, सुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू, फोन नंबर 42 43 736।
1: मलाई ट्रैक सूट चाहियो,
2: मलाई फ्रॉक,
3: मलाई पनि सूट,
4: अनि मलाई

0: சாவேல் சுச்சேபாடி
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने।

0: एड्रेस सुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू। फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820, मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सकूने।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: FM AJ 104.8 MHz.

0: गोल्ड पैलेस शुक्लपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 मा संपर्क करना सक्नुहुनेछ।
2: आजकल शुद्धता पाउन कति गाह्रो भइसक्यो।
3: जहाँ हेर्यो त्यहाँ मिसावट छ,
2: त्यसैले शुद्धता नै खोजौं।
4: जेजे ज्वेलर्स
5: प्रस्तुत छ
6: जेजे ज्वेलर्स।
5: जेजे ज्वेलर्समा छ सुन चाँदी तथा हिराका आकर्षक डिजाइनहरूको उत्कृष्ट कलेक्शन। सुन चाँदी तथा हिरा जे किन्नुहोस् जेजे ज्वेलर्सकै किन्नुहोस्।
7: जेजे ज्वेलर्स बसन्तपुर न्यू रोड दमकल नजिक स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक मुनि।
8: सम्पर्क नम्बर 5320411 9820076888।
5: जे जे ज्वेलर्स शुद्धताको पहिचान।

कौवा हंस की चाल चला लंगड़ा कर थोड़ा थोड़ा, कौवा हंस की चाल चला लंगड़ा कर थोड़ा थोड़ा, एक गधे ने कोशिश की वो भी बन जाए।

0: अगर आवाज दे दूं फलक पे तारे थम जाएं, हजारों चांद चिलमन छोड़ कर बाहर निकल आए।
1: इनसे कह दो वो कोई और होंगे।
0: तो फिर आप क्या हैं?
1: मैं वो

6 बजे। अब FM अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz को संध्याकालीन प्रसारण प्रारम्भ हुन्छ। FM अध्यात्म ज्योति प्रस्तुत गर्दछ संध्याकालीन सेवामा शुभ संध्या।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

0: जय शिव शंकर।
1: राजा मांधाता को शिव भक्ति में सफल होकर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की आराधना करते देखकर विंध्याचल की मेरु पर्वत से ऊंचा होने की आकांक्षा बलवती होती है। उसी समय देवर्षि नारद वहां पहुंचते हैं और उसे निष्ठापूर्वक शिवाराधना का परामर्श देते हैं ताकि उसकी आकांक्षा पूर्ण हो। तत्पश्चात देवर्षि भगवान शिव के दर्शनार्थ कैलाश पहुंचते हैं तथा विंध्याचल की व्यथा उन्हें सुनाते हैं। आशुतोष शिव अपने भक्त की कामना पूर्ति हेतु तुरंत विंध्याचल के पास पहुंचते हैं और उसकी इच्छानुसार वरदान देते हैं। प्रसन्न विंध्याचल वरदान पाकर ऊंचा उठकर आकाश को छूने लगता है। विंध्याचल के ऊंचा उठने से पृथ्वी पर अंधकार छा जाता है तथा उत्तर से दक्षिण के बीच व्यवधान से वातावरण का संतुलन बिगड़ने लगता है। ये देखकर अगस्त्य ऋषि चिंतित होते हैं। वे विंध्याचल से अनुरोध करते हैं कि वो पुनः नीचे की ओर झुक जाए, परंतु विंध्याचल नहीं मानता तो क्रुद्ध अगस्त्य उसे शाप देने के लिए प्रस्तुत होते हैं। भयभीत विंध्याचल उनके शाप से बचने के लिए उनके चरणों में झुक जाता है। अगस्त्य उसे आदेश देते हैं कि वे जब तक दक्षिण से न लौटे वो इसी प्रकार झुका रहे। अगस्त्य ऋषि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करके दक्षिण की ओर प्रयाण करते हैं। कश्यप ऋषि की दोनों पत्नियों, देवताओं की माता अदिति तथा दैत्यों की माता दिति के बीच अपने पुत्रों के विषय में वाद विवाद होता है। दिति अदिति को सूचना देती है कि उसके दैत्य पुत्र वज्रांग ने अदिति पुत्र इंद्र को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। अदिति भयभीत होती है। उसी समय शिव के आदेश पर कश्यप ऋषि कैलाश पहुंचते हैं। शिव उनसे अनुरोध करते हैं कि वे स्वर्ग जाकर वज्रांग को समझाएं कि वो स्वर्ग पर से अपना अधिकार छोड़ दे। कश्यप ऋषि स्वर्ग पहुंचकर इंद्र को भयमुक्त करते हैं तथा वज्रांग को समझा बुझाकर अपने साथ पृथ्वी लोक ले आते हैं। वज्रांग को स्वर्ग से लौटा देखकर उसकी माता दिति कोपायमान हो उठती है तथा उसे आदेश देती है कि वो असुर पुत्री वरांगी से विवाह करके अपने से भी अधिक बलशाली पुत्र उत्पन्न करे। माता के आदेश का पालन करते हुए वज्रांग वरांगी से विवाह के लिए प्रस्तुत होता है।

0: सदा स्वस्थ एवं प्रसन्न रहो। पराक्रम के साथ अपने कर्तव्य का निर्वाह करो।
1: अपने माता की मनोकामना पूर्ण करो वत्स।
2: दुआ क्या माते?
3: पुत्र वज्रांग, वधु वरांगी, मेरी समस्त शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं। पराक्रमी पुत्रों की माता बनो वधु।
4: बहु वरांगी, मेरे कुटीर में आना, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी।

0: प्रणाम माताश्री।
1: मैं दूधो नहाऊं वो तो फलों का आशीर्वाद नहीं दोगे वरानी? वचन देकर ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हो।
0: मैं आज्ञा के लिए प्रस्तुत हूँ माताश्री। क्या वचन चाहती हैं आप? मैं वो वचन देकर आपके आशीर्वाद से उसे सत्य भी कर दिखाऊंगी।
1: वरानी, मेरी छोटी बहन अदिति मेरी सौत बनकर मेरे पुत्रों के शत्रुओं को जन्म देती ही रही है। उसका पुत्र इंद्र मेरे पुत्रों का कट्टर शत्रु है।
0: इंद्र और देवताओं की शत्रुता को भला कौन नहीं जानता माताश्री?
1: इंद्र ने देवताओं के आराध्य विष्णु की सहायता से तीन तीन बार मुझसे उत्पन्न पुत्रों का वंश नष्ट करवाने का प्रयत्न किया है।
0: ये घटनाएं मुझे कुछ कुछ ज्ञात है माता।
1: मेरे पुत्रों के वंश से विष्णु की शत्रुता का यही अंत नहीं हुआ वरांगी। विष्णु ने वामन अवतार लेकर प्रहलाद के महाप्रतापी पौत्र बलि के साथ छल करके उसे पाताल लोक भेज दिया। इस अन्याय का प्रतिशोध लेने के लिए जब मैंने तुम्हारे पति वज्रांग को इंद्र का सिंहासन छीनने के लिए स्वर्ग लोक भेजा
0: तो क्या हुआ माता?
1: तुम्हारे ससुर कश्यप ऋषि अपनी प्रिय पत्नी अदिति के पुत्र इंद्र की रक्षा के लिए वज्रांग को स्वर्ग का साम्राज्य लौटाने के लिए विवश कर दिया और मेरा बेटा स्वर्ग से लौट आया।
0: माताश्री, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ। आप क्या चाहती हैं? आदेश दीजिए मुझे।
1: मैं तुझसे वज्रांग से उत्पन्न एक ऐसा पौत्र चाहती हूँ जो अपने पितामह के प्रति किए गए अन्याय का बदला इंद्र से ले सके। वरांगी, तुम एक ऐसे शक्तिशाली दैत्य पुत्र की माता बनो जिसका नाम सुनते ही इंद्र और देवता भय से थर थर कांपने लगे।
0: आपके आशीर्वाद से मैं दैत्य वधु होने के कर्तव्य को अवश्य पूर्ण करूंगी माता। मैं ऐसे शक्तिशाली पुत्र को जन्म दूंगी जो शत्रुओं का नाश करके दैत्यों के इतिहास में अपना नाम अमर कर देगा।
1: धन्य हो वरांगी, तुमने अपने सास के पीड़ित हृदय में प्रसन्नता की लहरें दौड़ा दी। तुम्हारा कल्याण हो। मेरा आशीर्वाद है कि वज्रांग से उत्पन्न होने वाला मेरा पौत्र दैत्य कुल के आकाश में ज्योतिर्मान तारों की तरह चमक उठे।
0: मैं दैत्यवर की पुत्री हूँ माता। दैत्य कुल की रक्षा के लिए मैं आपको दिया हुआ वचन अवश्य पूर्ण कर दिखाऊंगी। मुझे आशीर्वाद दीजिए।
1: प्रतापी पुत्र की माता बनो।
2: वरांगी ने अपनी सास दिति के आदेशानुसार एक परम शक्तिशाली दैत्य पुत्र को जन्म दिया। दिति के दोहित्र उस शक्तिमान वज्रांग पुत्र का नाम था तारकासुर। युवा तारकासुर को देखकर दिति की प्रसन्नता का पार न रहा।
1: वत्स तार, कपटी इंद्र से मेरा प्रतिशोध लेने के लिए तुम्हें पहले कठोर तपस्या करके अमरता का वरदान प्राप्त करना होगा। इसके लिए दो ही मार्ग है, या तो दैत्यों के आराध्य शिव को प्रसन्न करो या तपस्या करके ब्रह्मा को वरदान देने के लिए विवश करो। परंतु शिव को प्रसन्न करना अब संभव नहीं है क्योंकि सती के आत्म बलिदान के पश्चात शिव संसार से विरक्त हो चुके हैं। अब तुम ब्रह्मा को प्रसन्न करके उनसे अमरता का वरदान प्राप्त करो।
3: हाँ, जो आज्ञा पितामही। मैं ब्रह्मदेव को प्रसन्न करके उनसे अमरता का वरदान अवश्य प्राप्त करूंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए।

0: अग्नि ज्वाला स्वर्णलोक में कहाँ से आ गए स्वामी?
1: ये किसी शत्रु का षड्यंत्र प्रतीत हो रहा है शची।
0: ऐसा कौन सा शत्रु प्रकट हो गया जो स्वर्णलोक को जलाकर भस्म कर देना चाहता है?
1: गुरुदेव, गुरुदेव, शीघ्र ही हमारी रक्षा का कोई उपाय कीजिए, उपाय कीजिए गुरुदेव।

0: ब्रह्मदेवाय नमः।
1: चिंता करने की आवश्यकता नहीं है देवराज, ये कश्यप ऋषि का पौत्र वज्रांग का बेटा तारकासुर की तपस्या का परिणाम है। कठोर तप के कारण उसके ब्रह्मांड से ज्वाला निकलकर स्वर्ग लोक तक आ गई।
2: इतना कठोर तप करने का उद्देश्य क्या हो सकता है गुरुदेव?
1: वो ब्रह्मदेव को प्रसन्न करके उनसे वरदान पाने के उद्देश्य से तप कर रहा है।
3: गुरुदेव, कहीं अन्य दैत्यों की भांति देवताओं के शुभचिंतक भगवान विष्णु या देवताओं से शत्रुता करने के उद्देश्य से तो वरदान नहीं मांगना चाह रहा है?
1: ये तो उसके वरदान मांगने पर निर्भर करता है कि वो ब्रह्मदेव से क्या वरदान मांगेगा।

0: शिवाय नमः।
1: वत्स तारक, तुम्हारी कठोर तपस्या से हम प्रसन्न हो। शांत हो तप की ज्वाला, शांत हो। आंखें खोलो तारकासुर, कहो हमसे क्या चाहते हो?
2: ब्रह्मदेव,

0: प्रणाम ब्रह्मदेव, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। मैंने भी प्रण किया था कि जब तक आप मुझे दर्शन नहीं देंगे मैं तपस्या की ज्वाला में जलता रहूंगा।
1: अब बताओ तारकासुर, इस कठोर तपस्या का उद्देश्य क्या है, क्या कामना है तुम्हारी?
0: आप तो स्वयं विधाता है, समस्त प्राणियों का जन्म मरण आपके अधीन है। मैं अपने मातामही के आदेशानुसार उनकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आपसे अमरता का वरदान चाहता हूं। कृपा करके मुझे अमर होने का वरदान दीजिए ब्रह्मदेव।
1: तारकासुर, जिसने जन्म लिया है उसका मरण निश्चित है, सृष्टि के इस अटल नियम को हम बदल नहीं सकते।
2: हा?
1: अमरत्व का वरदान देने में हम असमर्थ हैं।
0: आप और असमर्थ? नहीं, यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता। यदि आप चाहे तो मुझे अमर होने का वरदान दे सकते हैं ब्रह्मदेव।
1: तारकासुर, मां के उदर से जन्म लेने वाले की मृत्यु उसके जन्म के समय ही निश्चित हो जाती है, यह विधि का अटल विधान है। अमरता के अतिरिक्त कोई अन्य वरदान मांग लो।
3: वत्सर, कपटी इंद्र से मेरा प्रतिशोध लेने के लिए तुम्हें पहले कठोर तपस्या करके अमरता का वरदान प्राप्त करना होगा। इसके लिए दो ही मार्ग, या तो दैत्यों के आराध्य शिव को प्रसन्न करो, या तपस्या करके ब्रह्मा को वरदान देने के लिए विवश करो। परंतु शिव को प्रसन्न करना अब संभव नहीं है, क्योंकि सती के आत्म बलिदान के पश्चात शिव संसार से विरक्त हो चुके हैं। अब तो ब्रह्मा को प्रसन्न करके उनसे अमरता का वरदान प्राप्त करो।
0: अवश्य प्राप्त करूंगा पितामही।
1: क्या सोच रहे हो तारकासुर? मांगो जो मांगना चाहते हो, हम तुम पर प्रसन्न हैं।
0: हाँ। आपके कथनानुसार यदि मेरी मृत्यु निश्चित है और आप मुझे अमरता का वरदान देने में असमर्थ है, तो कृपा करके मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कीजिए प्रभु।
1: बोलो वत्स, अमरता के अतिरिक्त हम तुम्हें कोई अन्य वर देने के लिए वचनबद्ध हैं। मांगो, क्या मांगते हो?
0: हाँ, यदि मेरी मृत्यु हो तो केवल शिव पुत्र के हाथों हो। शिव पुत्र के अतिरिक्त और कोई मुझे मार ना सके।
1: तथास्तु तारकासुर, हम तुम्हें वरदान देते हैं कि शिव पुत्र के अतिरिक्त दूसरा कोई तुम्हें मार नहीं सकेगा।
0: प्रणाम। धन्य हो तारकासुर, धन्य हो। सृष्टि के विधाता ब्रह्मा को भी तुमने अपने वाक जाल में उलझा कर अमरता का वरदान प्राप्त कर दिया। धन्य हो तारकासुर, धन्य हो। सृष्टि के विधाता ब्रह्मा को भी तुमने अपने वाक जाल में उलझा कर अमरता का वरदान प्राप्त कर दिया। सतिया के बलिदान के पश्चात शिव वैरागी हो चुके हैं। न शिव विवाह करेंगे, न शिव पुत्र होगा, न मेरी मृत्यु होगी। अर्थात अर्थात मैं अमर हूं, मैं अमर हूं। तारकासुर, तुम अमर हो, तुम अमर हो। दुष्ट देवता अमर तारकासुर अपने पितामही के आदेश का पालन करेगा। हाँ, अपने पितामही के आदेश।

0: पितामही, पितामही, आपका पौत्र तारकासुर आपके समक्ष उपस्थित है।
1: पौत्र तारक,
0: पितामही, आपकी इच्छा अनुसार मैंने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मदेव को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त कर लिया है।
1: पौत्र, तुमने क्या वर मांगा है ब्रह्मदेव से? कहीं अन्य दैत्यों की भांति तुझे भी भ्रमित करके ब्रह्मदेव ने अपना मनचाहा वरदान तो नहीं दे दिया?
0: नहीं पितामही, नहीं, मैंने ब्रह्मदेव को भ्रमित करके ऐसा वरदान मांगा है जो आप चाहती थी।
1: बता पौत्र, तूने ऐसा कौन सा वरदान पाया?
0: अतुल बलशाली होने के साथ साथ कभी मृत्यु संभव न हो, ऐसा वरदान।

0: मैंने ब्रह्मदेव से प्राप्त कर लिया है।
1: कभी मृत्यु संभव न हो?
0: हाँ।
1: ऐसा कौन सा वर मांगा है तूने?
0: पितामही, ब्रह्मदेव ने अमर होने का वरदान देना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा उदर से जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है, ये विधि का अटल विधान है।
1: अर्थात तू अमर होने का वरदान नहीं प्राप्त कर सका, तो मेरी मनोकामना कैसे पूर्ण कर सकता है? देवताओं का रक्षक कपटी विष्णु कब छल कर बैठे कोई पता नहीं, तू इंद्र से मेरा प्रतिशोध कैसे ले सकता है?
0: पितामही, मैंने ऐसा वरदान मांगा है कि विष्णु मुझे कदापि नहीं मार सकता। ब्रह्मा का विधान बदल जाएगा किंतु मेरा वरदान नहीं। मैंने ब्रह्मा से अमरता का वो वर मांगा है कि मेरी मृत्यु संभव ही नहीं।
1: पता पौत्र, तूने ऐसा कौन सा वरदान मांगा है?
0: पितामही, सती दाह के पश्चात दैत्यों के आराध्य शिव शंकर ने वैराग्य धारण कर लिया, अब ये कभी विवाह नहीं करेंगे, और मैंने शिव पुत्र के हाथों अपनी मृत्यु का वरदान मांग के ब्रह्मा को भी भ्रमित कर दिया। न शिव विवाह करेंगे, न शिव पुत्र होगा, न मेरी मृत्यु होगी, अर्थात अर्थात मैं अमर हूं।
1: तू धन्य है पौत्र, धन्य है।
0: बताइए अब मेरे लिए क्या आज्ञा है पितामही?
1: सर्वप्रथम तुम्हें समस्त असुर जाति का आवाहन करना होगा, कपटी इंद्र को परास्त करके स्वर्ग पर अधिकार पाने के लिए आसुरी शक्तियों का एकत्र होना अत्यंत आवश्यक है।
0: मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा पितामही। आपकी आज्ञा का पालन करते हुए मैं संपूर्ण आसुरी शक्तियों के साथ स्वर्ग पर अधिकार करके इंद्र की ऐसी दुर्गति करूंगा कि तीनों लोगों में उसकी करुण पुकार गूंज उठेगी।
1: तेरा कल्याण हो पौत्र तारकासुर, तूने अपने पिता वज्रांग का मात्र ऋण चुका दिया, तू दैत्य कुल शिरोमणि बनेगा, ये मेरा आशीर्वाद है।
0: पितामही,
2: महाप्रतापी वज्रांग के पुत्र असुर जननी दित्य के शक्तिशाली पुत्र दैत्य राज तारकासुर की जय।
3: असुर नायक तारकासुर की
4: जय।
5: दैत्य शिरोमणि तारकासुर की
4: जय।
5: दैत्य राज तारकासुर की
4: जय।
5: दैत्य राज तारकासुर की
4: जय।
0: असुर वीरो, अपनी पितामही दीति के आदेशानुसार हमने वर्षों कठोर तपस्या करके ब्रह्मा से अमर होने का वरदान प्राप्त किया है।
3: धन्य धन्य है असुरराज,
0: हमारे आह्वान पर समस्त असुर जाति को यहां एकत्रित देखकर हम अति प्रसन्न हुए। सबसे पहले हम अपनी पितामही दीति की इच्छा पूर्ण करने के लिए उस कपटी इंद्र को स्वर्ग से भगाएंगे। अब स्वर्ग पर असुरों का अधिकार होगा।
6: असुरराज, आप असुरों के महानायक हैं, आपका साथ देने के लिए सारी असुर जाति प्रस्तुत हुई है, आदेश दीजिए हमें क्या करना है।
7: हाँ दैत्यराज, आदेश दीजिए हमें क्या करना है।
0: स्वर्गाधिपति बनने के पश्चात हम पृथ्वी लोक के अधिकारी बनेंगे।
7: हाँ,
0: और जो पृथ्वीवासी हम दैत्यों की सत्ता स्वीकार नहीं करेगा उसे हम कुचल डालेंगे।
3: दैत्यराज तारकासुर, समस्त असुर आपके साथ हैं।
7: हाँ, हम सब आपके साथ हैं।
4: हाँ, हम सब आपके साथ हैं।
3: असुरराज तारकासुर की
4: जय।
3: असुरराज तारकासुर की
4: जय।
5: असुरराज तारकासुर की
4: जय।
0: आप असुरों का उत्साह देखकर हमारा मन प्रसन्न हुआ, हमें आपसे यही आशा थी। अब देखना, तीनों लोक पर अधिकार करके दैत्यों का ये महाप्रतापी पुत्र तारकासुर अनंत काल तक असुरों की विजय का ध्वज फहराता हुआ दैत्य जाति का नाम अमर कर देगा।
3: दैत्य जाति
0: असुर मिलो, अब हमारा प्रथम लक्ष्य है स्वर्ग पर आक्रमण।

ब्रह्मा से वरदान प्राप्त शक्तिशाली तारकासुर ने तत्काल स्वर्गलोक पर आक्रमण करके इंद्र सहित सभी देवताओं को बंदी बना लिया।

0: pra de Deus, tá, ó? Já começamos, sungar, hein? Ah! Nada mais tá aqui, draham, sem Deus, berrar, chuca, hein? Os teatro em pra de esmigar, carne, hein? Absorg par, hamara, vigar, hein? Hamara! Tum sab hamare adhin ho! Fih hamari jai jekar sunkar, chup kyo khare ho? Ha!
1: बोलो देवताओं बोलो, स्वर्गाधिपति तारकासुर महाराज की जय।
2: स्वर्गाधिपति तारकासुर महाराज की जय।
0: हम ये वाला अपनी जय जयकार सुनकर प्रसन्न नहीं हुए। देवताओं के स्वामी इंद्र, अपने समस्त देवताओं से कहो कि वह अपनी अपनी विशेष स्थितियां हमें सौंप दे। स्वर्ग की सारी निधियों पर स्वर्ग सम्राट का अधिकार होता है, और अब हम स्वर्ग सम्राट हैं, इसलिए उन निधियों पर केवल हमारा अधिकार है। हाँ, केवल हमारा, ये स्मरण रहे।

0: जोश के आ रहे हो इंद्र, इन सबको आदेश दो वरना हम इनकी नीतियां बलपूर्वक छीन लेंगे।
1: मैं आदेश देता हूं, देवता अपनी अपनी निधियां स्वर्ग सम्राट तारकासुर को सौंपते हैं।
2: हमें आपकी आज्ञा स्वीकार है देवराज।
0: हम जानते हैं किसके पास क्या है, किंतु हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। यदि किसी ने हमसे छल करने का प्रयत्न किया तो तारकासुर उसे कभी क्षमा नहीं करेगा। हाँ, कभी क्षमा नहीं करेगा। तुम्हारे पास क्या है वरुण?
1: मेरे पास श्वेत अश्व है, वो मैं आपको समर्पित कर दूंगा सुरराज।
0: कुबेर, तुम्हारे पास नौ दीधियां है, इसीलिए त्रिलोक में तुम सबसे धनवान माने जाते हो। कहो, कहां है वो दीधियां?
3: हमारी निधियां स्वर्ग के कोषागार में है स्वर्ग सम्राट। हम अभी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं।
0: सूर्य, तुम्हारे पास क्या है?
4: मैं अपना उच्च शर्वा आपकी सेवा में समर्पित करता हूं स्वर्गाधिपति।
0: समुद्र, तुम्हारे पास क्या है?
5: मैं अपने समस्त समुद्र रत्न आपके चरणों में अर्पित करता हूं।
0: इंद्र,
1: आज्ञा महाराज।
0: इंद्र, तुम्हारी महारानी सची और इन अप्सराओं के साथ साथ तुम्हारे पास जो भी दीदियां है, हमें उनमें कोई रुचि नहीं। तुम स्वेच्छा से इन्हें अपने साथ ले जा सकते हो।
1: जैसी आज्ञा महाराज।
0: इंद्र, अब स्वर्ग पर हमारा एक छत्र अधिकार है। यदि तुम देवताओं को यहां रहना है तो दासों की भांति रहना होगा। यदि किसी ने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया तो उसे कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा।
1: हमें स्वीकार है स्वर्ग सम्राट।
0: जाओ। Yeah!

0: महाराज हिमालय राज की जय हो।
1: स्वस्ति। हिमगिरि नरेश महाराज हिमालय राज का कल्याण हो।
2: पितरों की पुत्री हिमांचल महारानी देवी मैना की जय हो।
3: धर्म संवाहक धर्मात्मा ऋषिगणों तथा गुरुदेव गर्ग ऋषि का हिमालय राज के इस राजभवन में स्वागत है।
4: आपके दर्शन पाकर हम धन्य हुए ऋषिगण। आपकी धर्म कर्म तथा यज्ञ याग से ये पावन भूमि स्वर्ग की शोभा को प्राप्त हुई है।
1: हम सब भी आप जैसे धर्मात्मा राजा और राज महर्षि को पाकर प्रसन्न है देवी, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे धर्म कार्य में कोई न्यूनता शेष रह गई है।
3: न्यूनता ऋषिवर? कैसी न्यूनता? हम समझे नहीं।
4: हमें स्पष्ट समझाइए ऋषिवर, बताइए कि उस न्यूनता की पूर्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए।
1: महारानी मैना, वैसे तो आपके राज्य में सभी प्रकार के सुख और शांति है, परंतु
3: परंतु आप रुक क्यों गए ऋषिवर? अपनी संकोच कहिए, हमें क्या करना चाहिए? कहीं हम अपने राज कर्तव्य से विमुक्त तो नहीं हुए? कहीं हमसे कोई भूल तो नहीं हुई ऋषिवर?
1: नहीं राजन, नहीं। कर्तव्य विमुख आप कदापि नहीं हो सकते। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप एक आदर्श नरेश हैं। प्रजापालन तथा धर्मपालन दोनों के कर्तव्य का आप कुशलतापूर्वक निर्वाह कर रहे हैं।
2: सर्व संपन्न होकर भी आपकी प्रजा प्रकृति प्रकोप के कष्ट से दुखी है महाराज।
1: ऐसा प्रतीत होता है महाराज कि माता प्रकृति आपको किसी विशेष अनुष्ठान का संकेत दे रही है। पर्वतीय प्रदेश वनस्पतिहीन होते जा रहे हैं, जल स्रोत सूखते जा रहे हैं। यह परिदृश्य बता रहा है महाराज कि हमें देव कृपा से अक्षय जल स्रोत प्राप्त करना होगा।
3: ऋषिवर, ऋषिवर यह जल स्रोत कैसे प्राप्त होगा?
1: महेश्वर शिव के ब्रह्मनाथ से विगलित भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित ब्रह्मद्रव सृष्टि निर्माता परमपिता ब्रह्मा जी के कमंडल में है। हिमालय के जल स्रोतों को अक्षुण बनाए रखने के लिए हमें वो दिव्य जल प्राप्त करना ही होगा महाराज।
3: ऋषिवर, इसके लिए हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हमें क्या करना होगा?
1: महाराज, हिमालय के सर्वोच्च शिखर पर आप ब्रह्म यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए।
4: ब्रह्म यज्ञ का अनुष्ठान? अवश्य ऋषिवर। महाराज, अब हमारा प्रथम कर्तव्य ब्रह्म यज्ञ का अनुष्ठान करना है। हम इस यज्ञ के साथ ब्रह्मदेव से प्रार्थना करेंगे कि वह अपने कमंडल में विराजित उस दिव्य जल के कुछ अमृत बिंदु हमें प्रदान करें।
1: धन्य हो महारानी, आपका यह मंगल संकल्प अवश्य फलीभूत होगा। महाराज हिमालय राज की
0: जय।
1: महाराज हिमालय राज की
0: जय।
1: महाराज हिमालय राज की
0: जय।

राजन, यज्ञ की पूर्णाहुति के लिए अब आप खड़े हो जाएं। समिधा को अपने हाथ में ले ले महारानी, और राजन आप भी। राजन, परमपिता ब्रह्मदेव को अपनी आंखें बंद करके स्मरण कीजिए।

0: आपका कल्याण हो।
1: परमपिता ब्रह्मदेव की
2: जय।
3: परमपिता, हम आपके दर्शन पाकर धन्य हो गए। परमपिता, पृथ्वी पर जल तत्व के अभाव के कारण दुर्भिक्ष की आशंका बढ़ गई है।
4: सारी वनस्पतियां नष्ट हो गई हैं। इस संकट से अब हमें आप ही बचा सकते हैं परमपिता।
0: हिमालय राज, आप पृथ्वी के मुकुटमणि हैं। पृथ्वी के कुशल क्षेम के लिए हमारा आह्वान करना आपका धर्म एवं कर्तव्य था।
4: हमारी मनोकामना पूर्ण कीजिए प्रभु।
0: इस जलविहीन धरा के लिए अपने कमंडल में विद्यमान अक्षय दिव्य जल, जो भगवान विष्णु के चरण प्रक्षालन से अत्यंत पावन हुआ है, हम तुम्हें प्रदान करते हैं।
4: भगवान विष्णु के चरणों का चरणामृत।

0: गंगा, तुम पृथ्वी पर हिमालय की पुत्री के रूप में प्रकट हुई हो।
1: परमपिता, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, परंतु आपके देवलोक से मैं कैसे दूर रह सकूंगी? आदि देव
0: गंगा, तुम कल्याण रूपा देवी हो। जब समय पूर्ण हो जाएगा तो मैं स्वतः तुम्हें देवलोक ले जाऊंगा।
1: जो आज्ञा परमपिता।
2: परमपिता, ये जल और ये कन्या
0: हिमालय राज

0: अध्यात्म ज्योति 104.8
1: प्रत्योह वारण सुवारण वक्त्रतुभ्यां प्रत्याहृते रखिल पुण्य सरिद्वराभ्यास तीर्थैर्ददाम्यमलमाचमनं चतुभ्यां सूक्तादिमन्त्र निवहैरभिमन्त्रितैश्च पुण्योदकैस्तव शिरः स्नपयाम्यजस्रम् आचूडमाचरणमप्यभिषिच्य तीर्थे आलोक्यन्नमखिलमङ्गलमाननं ते आनन्दनिर्भरमना

हि भक्तं पुष्पाञ्जलिं प्रचुरयामि सुवर्ण पुष्पे सन मंत्र पुष्पमपि च प्रतिपादयामि सर्वोपचारप निवहांश्च समर्पयामि स्वामिन् गणाधिप समुद्धर मां भवाब्धे नारोग्यमद्यक